0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: शास्त्री साथै बाइबलीय विद्वान।
1: टाइम चेक। यति बेला अपराह्नको 3 बज्यो।